0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: So sorry.
2: अब ना त्योहार पर सोने के हार का टेंशन, न शादी में कंगन का मेंशन। अब ना त्योहार पर हार का टेंशन, न शादी में कंगन का मेंशन। पत्नियां ना जाने क्यों हो गई उदास, मोदी जी के मंत्र से पतियों ने ली चैन की सांस।
3: सुनो, इस अनाउंसमेंट ने जीता हमारा दिल। बीवियों का सोना खरीदना हो गया है मुश्किल, हो गया है मुश्किल।
2: थैंक यू मोदी जी।
4: सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए

0: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it, and eat it for breakfast, wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League, and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
2: It's your boy,
1: just
2: Jay-Z.
1: Search classic hip-hop, or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: An India Today's Delhi ground reality check exposed the real intensity of the heat. Using a thermal camera in Nandanagri, surface temperatures under direct sunlight crossed 65 degrees Celsius.
4: दिल्ली की नंदनगरी में पहुंची है और जहां हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे, एक तो आपको दिखाएंगे कैमरे के जरिए क्या आप देखते हैं और दूसरी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि थर्मल कैमरे के जरिए कि कितनी गर्मी है। ये थर्मल कैमरा आपको वो दिखाएगा कि इस समय दिल्ली में तपिश क्या है, अलग अलग जो सरफेस हैं वहां तपिश के क्या हालात हैं। तो सर, जो आपका है थर्मल कैमरा इस समय, मैं ये रोड देख सकता हूँ, इसका कितना तापमान दिखा रहा है?
5: जो इस टाइम इसका सरफेस टेम्परेचर दिखा रहा है वो है 62 दिखा रहा है, 63 दिखा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें।
3: रोड्स, व्हीकल्स एंड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स वर रेडिएटिंग एक्सट्रीम हीट व्हाइल टेम्परेचर्स ड्रॉप्ड शार्पली अंडर ट्री कवर, हाईलाइटिंग द क्रिटिकल रोल ग्रीन स्पेसेस प्ले इन कूलिंग सिटीज।

0: Big news coming in from a border nation. Suspected suicide attack in Pakistan's Quetta. In Quetta, we are told it was a suicide blast that has targeted passengers in the train. A heavy casualty has been reported. Incident near Chaman Fatak in Quetta, where explosion near railway track has happened. Because it happened in a busy area, 30 people have been confirmed dead. 47 injured in the attack. One bogey of train completely found burnt. So who's behind this attack? We've seen attacks in Quetta in that area earlier as well, but several houses, vehicles have been damaged near the track. And remember, usually near the railway tracks, there are these localities, residential areas as well. Police and rescue teams have rushed to the blast site. They are fearing that this was a suicide attack. Just to give you a background, earlier as well, in 2024, in January 2026, there have been different kind of attacks, especially in these areas. And I want to bring in my colleague Arvind Oja for the latest on that. Arvind, ye to kafi heavy attack dekha ja raha hai. Kya isko bhi hum Balochistan Liberation Army ke hisab se joda hai? Kya us tarah se aapko koi info mil raha hai? Par kitna bada attack dekha ja raha hai ye?
1: देखिए, अभी तक बीएलए ने इसको क्लेम नहीं किया है, लेकिन इनिशियल जो इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक बीएलए ने ही इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। ये रेलवे ट्रैक पे ब्लास्ट हुआ है। जो जाफर एक्सप्रेस है वो पेशावर की तरफ से आ रही थी और इसमें पैसेंजर ये ट्रेन थी और अचानक से जो क्वेटा में चमन फाटक है वहां पर रेलवे ट्रैक में ब्लास्ट हुआ। उसके बाद एक बोगी है वो कंप्लीटली बर्न हो गई है। उसमें जो लोग बैठे हुए थे उनकी मौत हो गई। जो अभी अभी जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हमें जो जानकारी मिली है वो 23 लोगों की इसमें मौत हुई है, 53 इंजर्ड है। ऑल्दो ये अलग अलग जो पार्ट मीडिया है वो क्लेम कर रहा है, लेकिन जो इनिशियल जानकारी आई है उसके मुताबिक 23 लोगों की मौत हुई है, 53 लोग इसमें घायल हुए हैं। अब बात की जाए इस पूरे रेलवे ट्रैक की, तो इस रेलवे ट्रैक में जैसा आपने बताया कि पहले भी अटैक हुए हैं और जितने भी अटैक हुए हैं उसमें सभी ने जिम्मेदारी बीएलए ने ही ली है। तो एक बड़ा ये अटैक है जो रेलवे ट्रैक हुआ, जिसके बाद जो पैसेंजर ट्रेन थी उसकी एक बोगी कंप्लीटली बर्न हो गई और रेलवे ट्रैक के आसपास जो रेजिडेंशियल इलाके थे, जो गाड़ियां थी, वो भी ब्लास्ट की चपेट में आई है। पूजा,
0: That's a big breaking news coming in that a suspected suicide blast, a Fidayin attack also as it is called, appears to have taken in Quetta, where a train has been targeted and there have been casualties as well, 30 casualties. Arvind, kya ye information aap bata sakte hain jo casualties batai ja rahi hain 30 ke kareeb, kya ye passengers the ya ye jo aaspaas rehaishi area hai wahan ke log hain, to kis tarah ka attack ye dekha ja raha hai ki attack track ke paas hota hai jisse itna multiple heavy damage ho?
1: बिल्कुल, और ये जो ट्रेन है इसको टारगेट किया गया था और जो कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा कैजुअल्टी हो, ज्यादा जो कैजुअल्टी जो पैसेंजर जो ट्रेन में बैठे थे उनकी हुई है और कुछ जो रेलवे ट्रैक के पास रेजिडेंशियल इलाका था वहाँ वो चपेट में आए, लेकिन ज्यादातर जो कैजुअल्टी है वो जो ट्रेन में बैठे पैसेंजर थे उनकी, और टारगेट ट्रेन को ही किया गया था। और इस रूट पर पहले भी जो ट्रेन है उसको निशाना बनाया गया है, कई बार ब्लास्ट से उड़ाया गया है। एक बार तो 48 आवर तक बीएलए के जो फाइटर्स थे उन्होंने उसको इस तरीके से हाईजैक करके ट्रेन को रखा था, लेकिन ये जो रिसेंट ब्लास्ट है ये सस्पेक्टेड सुसाइड ब्लास्ट बताया जा रहा है, जिसमें काफी कैजुअल्टीज है और काफी लोग इंजर्ड है और इंजर्ड की संख्या बढ़ रही है। एक बोगी तो अगर आप देखेंगे विजुअल्स में तो वो कंप्लीटली बर्न हो गई है। रेस्क्यू टीम फिलहाल वहां पर लगी है, आसपास की जो पुलिस की टीम है, रेलवे के ऑफिसर्स है, वो रेस्क्यू में लगे हुए हैं। जी
0: अरविंद, हमारे साथ बने रहिए, वी आर स्टेइंग ऑन दिस बिग स्टोरी दैट देयर हैज बीन एट लीस्ट injuries and casualties that have been reported in Pakistan's Quetta. Fidayin attack is being seen that explosion took place near the Chaman Fatak in Quetta, near railway track. It triggered a fire close to the railway track, prompting locals and emergency teams to also jump in. Explosion has caused extensive damage in the surrounding areas. For those who may remember that Jaffar Express, the name that's come in here, and Arvind, I bring you in here on that. जाफर एक्सप्रेस पे पहले भी हमें याद है जब किडनैपिंग और अटैक हुआ था, कितना बड़ा उस हिसाब उसको देखा गया था, तो ये सिमिलरली उसी एरिया में उसी ट्रेन को कह सकते हैं कि अटैक हुआ है?
1: बिल्कुल, जो क्वेटा है उसी इलाके में और सिमिलर काइंड ऑफ अटैक है।
0: जी
1: रूटों में जो एक पैटर्न है, और खासतौर से इस रूट से जाफर एक्सप्रेस गुजरती है और जो बीएलए के फाइटर्स है उनके लिए इजी हो जाता है, और इस वजह से रेलवे ट्रैक को वो निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। इनका जो मेन मोटिव होता है कि किसी तरह से जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसको मैसेज देना, क्योंकि ये सभी को मालूम है कि बीते कई दशकों से जो बीएलए के लोग हैं उन पर किस तरह से जुल्म पाक आर्मी और पाकिस्तान की सरकार कर रही है, उसी को लेकर बीएलए की ये लड़ाई है। और अभी रिसेंट अटैक को भी उसी से जोड़ करके देखा जा रहा है, जिसमें काफी लोगों की मौत हुई है, कई कैजुअल्टीज हैं और कई लोग इंजर्ड हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जाफर एक्सप्रेस की बात की जाए तो 48 आर तक जो बीएलए के फाइटर्स थे उन्होंने जो ट्रेन है उसको हाईजैक करके रखा था, उसमें भी कई लोग मारे गए थे, और उसके बाद फिर ट्रेन को रेस्क्यू कराया गया था।
0: Remember that this is one train that's been hijacked, bombed, derailed. Jaffar Express has consistently in the past few years faced attacks, usually by the BLA, but otherwise as well, has been clearly one of the headaches for Pakistan establishment to handle, as there are targeted attacks, bomb explosions, as and when Jaffar Express crosses. Thank you for now. Arvind Oja with this news coming up.

0: और कितनी देर में ये रिचुअल शुरू होंगे?
1: का जो शव है वो बाहर आ गया है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो फाइनल मूवमेंट्स हैं, फाइनल जर्नी से पहले त्विशा की, वो यहाँ पे पंडित की तरफ से, जो त्विशा का परिवार है, उनको वो कर्म सारे करवाए जा रहे हैं। सामने अगर आप देखें तो त्विशा के भाई हर्षित और त्विशा की भाभी राशि, उनको यहाँ पे खड़ा किया गया है। और क्योंकि त्विशा जो है वो एक सुहागन थी, तो जो लाल जोड़ा है वो भी यहाँ लेकर के पहुंचे हैं परिवार के लोग। और जो अंतिम संस्कार से पहले शव को, क्योंकि 12 दिनों के बाद मोर्चुरी से बाहर त्विशा का शव पहुंचा है, तो उसे यहां से ले जाने से पहले जो क्रियाएं होती हैं, धार्मिक क्रियाएं होती हैं, वो पूरी की जा रही है। पंडित सामने पहुंच गए हैं, फैमिली के पंडित हैं, और उनके पास अगर आप देखें तो गंगा जल भी है, और पूरा का पूरा परिवार जो है भावुक। आप त्विशा के भाभी के भाव भाव देखिए, राशि अबरोल की आंखों में आप देखिए फूट फूट कर वो भी रो रही हैं। अब सामने हर्षित हैं, और वो देखिए वो अपने आंसू को पोछने की कोशिश कर रही है। परिवार के साथ वो दृढ़ता से इतने दिनों से डटी हुई खड़ी रहीं और लगातार वो बने रहे, लेकिन अब जिस तरीके से भावनाओं का ज्वार फूटा है, इमोशंस जो है वो फूट गए हैं पूरे तरीके से, क्योंकि वो इंतजार जो था इतने दिनों का कि कब वो त्विशा को देख पाएंगे और कब उसको क्रीमेट किया जाएगा, तो उससे ठीक पहले जैसे ही बॉडी आई बाहर तो जितने भी यहाँ पे आंखें थी सब नम हो गई हैं। और सामने अगर आप देखें तो ये कुछ अंतिम धार्मिक क्रियाएं हैं जो जो ग्रह, ये देखिए शादी का लाल जोड़ा, ये शादी का लाल जोड़ा है जो त्विशा को इस वक्त उड़ाया गया है, क्योंकि सुहागन थी त्विशा, शादी के 5 महीनों बाद ही उसकी मौत हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में। तो त्विशा के भाई ने अपने हाथों से अपनी बहन को ये शादी का लाल जोड़ा पहनाने की तैयारी की है, और देखिए त्विशा की भाभी हैं और उनके भाई हैं, इन दोनों ने त्विशा को, ये आप देखिए ये लाल साड़ी, ये वो लाल साड़ी है, ये लाल साड़ी है जो त्विशा को अब पहनाई जा रही है यहाँ पे। और ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो शादी का लाल जोड़ा है जिसे पहन के त्विशा दिसंबर 2025 में समर्थ के घर आई थी, और उसी घर से अब उसकी अंतिम विदाई भी हो रही है इसी लाल जोड़े में। तो उसी लाल जोड़े के साथ अपनी बहन को विदा दे रहे हैं हर्षित, और साथ ही में उनकी भाभी आप देखिए पूरी तरीके से भावुक हैं। और यहाँ पे पूरा का पूरा परिवार जो है, त्विशा की माँ जो है यहाँ बेहोश हो गई थी कुछ समय पहले जैसे ही शव बाहर आया था मोर्चरी से, और अब ये तस्वीरों में आप देखिए उनकी भाभी की आंखों में आंसू, वही भाभी जो एक समय त्विशा की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, जिनसे त्विशा अपनी हर एक बात जो है शेयर करती थी, आज वो अपने हाथों से उसे सजा रही हैं, और सुहागन की तरह सजा करके त्विशा को विदा किया जाएगा, क्योंकि वो एक सुहागन थी, समर्थ की पत्नी हैं। और पूरा का परिवार जो है इस वक्त आप देख सकते हैं भावुक हो चुका है, सेना के जवान भी यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि हर्षित जो त्विशा के भाई हैं वो सेना में मेजर हैं, सेना के जवान भी यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे केस को, अभी तक जब तक CBI टेक ओवर नहीं करती तो पुलिस के लोग भी यहाँ मौजूद है। तकरीबन 4 घंटे तक ये पूरा पोस्टमार्टम चला, डॉक्टर्स की टीम जा चुकी है, और जो क्रिमेटोरियम ग्राउंड है जहाँ पे भदभदा में ये शमशान घाट है जहाँ पे अंतिम संस्कार होना है, वहाँ पे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो चिता क्रमांक 5 है उसे वहां तैयार किया गया है भदभदा में, जहां पे त्विशा को ले जाकर के वहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये बस अंतिम चंद लम्हे और हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद क्योंकि त्विशा का शव जो है यहां से रवाना हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये त्विशा के रिश्ते के भाई हैं जो आपको यहाँ अर्थी तैयार करते हुए दिख जाएंगे, ये कजिन भाई हैं त्विशा के, सभी लोग, आशीष है, सौरभ है, तमाम दूसरे लोग हैं जो यहाँ पे अब अपनी बहन की अर्थी को तैयार कर रहे हैं। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 5 महीनों के भीतर ही उन्हें अपनी बहन को इस तरीके से यहाँ से विदा करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर में ही शादी हुई थी और बड़े हंसी खुशी इन्होंने त्विशा को नोएडा से विदा किया था, और अब उसके बाद जो है यहाँ पर फिलहाल जो त्विशा का शव है ये अब अपनी अंतिम यात्रा के लिए रवाना होने वाला है। और ये पल किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतने जल्दी आ जाएगा, महज 5 महीनों में ही जिस बहन को, जिस बेटी को इन्होंने अपने घर से हंसी खुशी विदा किया था, उसे रोते हुए इस तरीके से अब इस दुनिया से उन्हें विदा करना पड़ेगा, महज 5 महीनों के भीतर ही। और पता नहीं आवाज स्टूडियो तक पहुंच पा रही है या नहीं, लेकिन हम यहां से जो सुन पा रहे हैं इस वक्त, त्विशा की माँ हो, त्विशा के परिवार के दूसरे लोग हों, सभी जो है बहुत ज्यादा भावुक हैं, बहुत रो रहे हैं, और उनकी आवाज यहाँ गेट तक पहुंच रही है, हम तक, हमारे कानों तक पहुंच रही है। और वो जो रुदन है, वो जो चीख है, चित्कार है उनके मन में, और ये आप देख सकते हैं हर आंख नम है यहाँ पे, हर चेहरा भावुक है। क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि उन्हें इस तरीके से अपनी बेटी की विदाई करनी होगी। अब बस कुछ सेकंड आप मानिए या कुछ मिनट और मानिए, बस वो यहाँ से संपन्न जैसे होंगे उसके बाद यहाँ से त्विशा को अंतिम संस्कार के लिए भदभदा शमशान घाट रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले एक अंतिम दर्शन यहाँ के महिलाएं जो हैं खास तौर से उन्हें करवाए जा रहे हैं, जो शमशान घाट नहीं पहुँचेंगी, जिनमें से जो महिलाएं यहाँ रुक जाएंगी, जो शमशान घाट नहीं जा सकती हैं, उनको यहाँ अंतिम दर्शन करवाए जा रहे हैं। और हर एक महिला जो है या पुरुष जो है परिवार का, वो ये देखिए, आप शब्द सुनिए, आप चीख सुनिए परिवार की, जो माँ है वो पहुँच गई हैं त्विशा के पास और उसके शव से लिपट के वो रो रही हैं। इस वक्त तस्वीरों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये त्विशा की माँ है जो शव से लिपट चुकी हैं। वो देखिए, आप देखिए सामने तस्वीरों में, वो देखिए उनको उठाया जा रहा है बार बार, जो हम आपको कह रहे थे कि स्टूडियो तक वो आवाज़ शायद ना पहुँच पा रही हो लेकिन हमारे कानों तक यहाँ पहुँच रही है। और यकीन मानिए हर कोई भावुक है। ये देखिए उनकी माँ की हालत कैसी हो गई है, ये त्विशा की माँ है जिनको यहाँ से अब शव से थोड़ा दूर ले जाया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी, वो लिपट गई थी अपनी बेटी के शव के साथ। विदा जब किया था त्विशा को दिसंबर 2025 में, तब भी वो अपनी बेटी से लिपटी थी, वो खुशी के आंसू भी थे क्योंकि उनकी बेटी जो है हंसते खेलते घर से विदा हुई थी। दुख इस बात का था कि बेटी अपना घर छोड़ के पराए घर जा रही है। लेकिन ये देखिए अब त्विशा की माँ सामने, ये देखिए उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये त्विशा की माँ है। आप देखिए बार बार वो बेहोश हो रही है, बेसुध हो रही हैं, परिवार के लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें, लेकिन अब गाड़ी में बैठाया जा रहा है और उन्हें अब यहाँ से रवाना किया जाएगा क्योंकि उन्हें संभालना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये त्विशा की माँ है, आप जो देखिए गाड़ियों में ले करके अब उन्हें ले जाया जा रहा है, वो ये देखिए पिछले 2 घंटे से वो लगातार रो रही हैं, उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी अब इस तरीके से उसे विदा करना पड़ रहा है। इसलिए अब उनकी माँ को जो तमाम घर की महिला सदस्य हैं वो अपने साथ लेकर के गाड़ी में रवाना हो रही हैं यहाँ से। इस गाड़ी में अब त्विशा की माँ को ले जाया जा रहा है, परिवार की बाकी महिलाएं जो हैं वो भी इसी गाड़ी में हैं। कोशिश हो रही है कि उन्हें थोड़ी हिम्मत बंधाई जाए, हालांकि एक माँ है वो, और जाहिर सी बात है माँ कब तक अपने आप को रोक पाती, इतने दिनों से वो बेहद दृढ़ता के साथ अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग लगातार कर रही थी, तमाम मीडिया चैनल्स में आकर के लोगों से बात करके वो अपना पक्ष रख रही थी, उनको जो सवाल उनके मन में थे उनकी बेटी की मौत को लेकर के उन्हें उन्होंने रखा, बड़ी निडरता के साथ रखा। लेकिन आज जब 12 दिनों के बाद पोस्टमार्टम के बाद त्विशा का शव मॉर्चुरी से बाहर आया, 12 दिनों के बाद सोचिए बेटी का शव जब बाहर आया, तो एक माँ कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जो इतने दिनों से मजबूत रही हो, वो खुद को रोक नहीं पाई। और यही हुआ, जैसे ही त्विशा का शव मॉर्चुरी से बाहर आया, त्विशा की माँ फूट फूट कर रोईं, उन्होंने छाती से लगा लिया अपनी बेटी के शव को, बड़ी मुश्किल से परिवार ने अलग किया है उन्हें, और रोते बिलखती माँ को फिलहाल अब एक दूसरी गाड़ी में बैठाया गया है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको फिर से एक बार वो तस्वीरें दिखा देते हैं जो फिलहाल त्विशा के जो भाई हैं, रिश्ते के भाई हैं, सगे भाई हैं हर्षित, वो सभी लोग अब अपनी बहन की अर्थी तैयार कर रहे हैं और उस अर्थी में जो है अब त्विशा के शव को रखा गया है और बस अब शव को उठाने की तैयारी चल रही है। शव गृह में शव वाहन जो है वहां पर आ चुका है और ये देखिए अब ये अंतिम समय, ये शव उठाने की तैयारी शुरू हो गई है और त्विशा के शव को अब जो परिवार है वो इन भावुक क्षणों में अंतिम समय आप देख सकते हैं, अंतिम यात्रा कहा जा सकता है कि अंतिम यात्रा ही है कायदे से, ये अंतिम यात्रा एक बेटी की उसके घर से या एक बहू की उसके ससुराल से निकलती है। लेकिन यहाँ जो हालात बने हुए हैं उसके बाद, ये देखिए राम नाम सत्य का बोलते हुए परिवार ने त्विशा के शव को कांधा दिया है और अब यहाँ से त्विशा का शव रवाना हो रहा है शमशान घाट के लिए। ये त्विशा के भाई हैं, उसके परिवार के लोग हैं, उनके चाचा हैं, परिवार के दूसरे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सेना के जवान हैं, पुलिस के लोग हैं, ये सभी लोग अब यहाँ पे हैं और त्विशा के शव को कांधा देकर जो शव वाहन है उसमें रखा जा रहा है और इसी शव वाहन के साथ अब त्विशा जो है वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकलने वाली है। और ये भावुक क्षण उन तमाम लोगों के लिए जो त्विशा को कहीं ना कहीं ज़रूर जानते थे, जो नहीं भी जानते थे वो भी यहाँ भावुक हैं। ये त्विशा के चाचा हैं सामने लोकेश, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो त्विशा के जो पिता हैं वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वो भी अब बेहद भावुक यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इतने दिनों से लड़ाई उन्होंने लड़ी, इस पूरे इस लड़ाई को उन्होंने आगे फ्रंट से लीड किया और अब आप देखिए एक बाप, ये त्विशा की भाभी हैं राशि, जो आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, ये भी भावुक हो गई। और सामने आप देखिए शव वाहन के ठीक बाहर ये त्विशा के पिता हैं सफ़ेद शर्ट में, जो अब बड़ी बेबसी से अपनी बेटी की इस अंतिम यात्रा को देख रहे हैं। किसी भी पिता के लिए ये क्षण बेहद ज्यादा भावुक हो जाता है, क्योंकि अपनी संतान को, अपनी संतान के शव को वो कंधा देते हैं, तो एक पिता के लिए इससे ज्यादा कठोर क्षण शायद ही कोई होता होगा। लेकिन मजबूरी, बेबसी समझिए या नियति का क्रूर चेहरा देखिए कि त्विषा के शव को, एक बेटी के शव को एक पिता जो है वो कंधा दे रहा है। और अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं तमाम परिजन भदभदा शमशान घाट के लिए, जहाँ त्विषा के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये सभी वो लोग हैं जो इतने दिनों से लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे थे त्विषा को इंसाफ दिलाने के लिए, और अब यहाँ पर रवाना हो रहे हैं सभी लोग त्विषा का शव जो है लेकर के। परिवार के लोग अलग अलग गाड़ियों से जाएंगे, वहीं जो त्विषा का शव है वो शव वाहन से रवाना होगा। और पुलिस ने भी व्यवस्था यहाँ कर रखी है इन लोगों के लिए कि अगर कोई व्यवस्था कम पड़े तो। लेकिन इन सबके बीच में आप देखिए त्विषा का शव जो है वो रवाना हो रहा है। त्विषा के पिता हैं जो यहाँ पे बात फिलहाल हाथ जोड़े, उन्होंने बात अभी करने से मना कर दिया। बहुत ज़्यादा भावुक है, आप देखिए रो रहे हैं त्विषा के पिताजी। बड़ी हिम्मत से इन्होंने इतने दिनों तक संभाले रखा अपने आप को, अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए 12 दिनों तक लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन एक बाप है, एक पिता है, अब वो अपने आप को कब तक रोक पाता। और अब ये त्विषा का शव लेके शव वाहन जो है रवाना हो रहा है यहाँ से। आप तस्वीरों में देखिए पुलिस ने फिलहाल रोक रखा है। परिवार के तमाम लोग हैं, त्विषा के भाई हैं जो इस शव वाहन में फिलहाल मौजूद हैं, जिन्हें लेकर के यहाँ से अब भदभदा शमशान घाट ले जाया जाएगा। और इन सबके बीच में ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि आज तक वो चैनल है जिसने लगातार इस खबर के हर एक पहलू से आपको रूबरू कराया, हर एक तस्वीर आप तक पहुँचाई। और अब जब त्विषा अपने अंतिम सफर पर निकल रही है, अंतिम यात्रा पर रवाना हो रही है, तो पुलिस की इस भारी मौजूदगी में, मीडिया की भीड़ में और लोगों की भीड़ में आज तक आपको वो तस्वीर दिखा रहा है जिसमें अब त्विषा के शव को लेकर के जो परिवार है वो रवाना हो रहा है। ये वो गाड़ी है, वो शव वाहन है जिसमें त्विषा का परिवार, और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए परिवार है यहाँ पे जो त्विषा के शव को लेकर के अब यहाँ से रवाना हो गया है। और ये त्विषा का शव है जो फिलहाल आप देख रहे हैं इस गाड़ी में रखा हुआ है, और परिवार के लोग इस शव को लेकर के अब यहाँ से रवाना हो गए हैं, क्योंकि अब अंतिम संस्कार जो है कुछ ही समय में त्विषा का शुरू होने वाला है। और आखिरकार जो इंतजार था इतने दिनों का, वो इंतजार अब यहाँ पर खत्म होने वाला है जब त्विषा के शव को लेकर के परिवार रवाना हो गया है भदभदा शमशान घाट के लिए। और थोड़ी ही देर में त्विषा का अंतिम संस्कार जो है वो भदभदा शमशान घाट में पूरा कर लिया जाएगा। अमरीश, अमरीश चलो चलो भैया, हटाना चलो।
0: This is what Ravish was bringing us, reports from the final rites, the last journey in a way of Twisha right before the cremation rituals begin at Bhopal itself, where her entire family from Noida has currently travelled to. Remember, it's a moment, it's an entire moment that we see, an emotional moment. More importantly, this family has fought tooth and nail for their daughter and for the justice that she deserves. The clarity as to why Twisha killed herself, and did she indeed kill herself? There are several questions that are still unanswered about this very death case. 33-year-old Twisha Sharma, who got married. Those visuals that we've been playing for you since day one, a lot of them from her marriage itself, unimaginable for the parents, inconsolable parents. One day we can see that they have really collapsed and given in to their emotions at this given point, because bidding adieu to your own daughter is not something any parent is ever ready for. We will keep our track on this story. But for now, viewers, we're slipping into a short break. Do stay tuned to India Today as we come back with more details on the other side.
2: You are watching India Today.
3: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
4: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
6: Peace of mind? It starts with a click. Seatbelts aren't just smart. They're part of your fit check, whether it's a hoodie or a suit. That buckle completes the look. So when will it click? Seatbelts save lives, yours and everyone riding with you. United we go. One click, one choice, every ride. Click it or ticket. A message brought to you by the DC Highway Safety Office. Learn more at unitedwegodc.com.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir It Up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.

0: On that note, viewers, we are taking you back to Bhopal at this given point where it is the last rites of Tushar Sharma. It's her last final journey that we see before the cremation, and she will finally be laid to rest any moment now. Her family finally accepted the body 12 days after death after a team of the AIIMS Delhi doctors conducted her second autopsy after a long legal battle on the same. This is what we are bringing to you, the latest visuals of the very final journey. Her family members, also members from the military, as her brother and father.
1: Police bhi lagatar yahan pe jo hai media ko dur kar rahi hai, aur aap dekhiye bhavnaon ka johar jo hai wo kis tarike se hai. Tusha ke jo shav ko ab yahan se le jaya ja raha hai, jo chita hai wahan pe saja di gayi hai, jahan pe Tusha ko अंतिम संस्कार के लिए रखा जाएगा. और फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि तुषा के परिवार के लोग जो हैं वो राम नाम सत्य के साथ ही अब तुषा को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच चुके हैं भदभदा शमशान घाट. और सभी जो है बेहद भावुक हैं, नम हैं सबकी आंखें कि महज 5 महीनों में ही शादी के उन्हें इस तरीके से अपनी घर की बेटी को, किसी की बहन को विदा करना पड़ रहा है. और जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे जो नोएडा से आकर के लगातार इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे, अर्षित हैं, तुषा के भाई हैं और तुषा की भाभी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतिम समय पे. और अब जो है यहाँ से तुषा आखिरी सफ़र पर निकलने वाली है. और ये वो जगह है जहाँ पे तुषा के शव को अब अंतिम यात्रा के लिए शमशान घाट पर लाया गया है. और ये वो तस्वीर है जहाँ पर आप देख सकते हैं तुषा को अब लेकर के पहुंच गए हैं परिवार के लोग. और ये तस्वीरें जो हैं ये बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीरें जो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं. और इन सब के बीच में वो क्षण जो कोई भी पिता नहीं देखना चाहता अपने जीते जी. और ये देखिए भावुक क्षण, तुषा के भाई जो हैं वो फूट फूट कर रो रहे हैं, कजिन भाई जो हैं तुषा के, वो कोशिश कर रहे हैं रोकने की खुद को, लेकिन रोक नहीं पाएंगे क्योंकि इसके बावजूद इतना होने के बाद भी जो है वो जितना रोक सकते थे खुद को रोका उन्होंने. लेकिन आज जब तुषा को अब वो समय आ ही गया, वो क्षण आ ही गया है अंतिम क्षण तुषा की विदाई का, तो अब तुषा के जो परिवार के लोग हैं वो इस घड़ी में भी एक दूसरे को हिम्मत बंधाते हुए यहाँ देखे जा सकते हैं. तो रोते हुए दिख जाएंगे आपको इन सब के बीच में. और ये तस्वीरें हैं उस परिवार की जिसने इतने दिनों तक लंबी लड़ाई लड़ी है अपनी बेटी के सेकेंड पोस्टमार्टम की. और अब जब पोस्टमार्टम हो गया है तो तुषा को अब आखिरकार विदा किया जा रहा है, पंच तत्वों में वो विलीन होने वाली है कुछ ही क्षणों में. कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक.
0: Viewers, that was Ravish, who has in fact been bringing us every detail of this very case since day one. 12 days. And imagine the plight of the family. They weren't able to access the body, or rather they in fact denied to take back the body simply because of their demand for justice. A family that deserves to know what happened to their daughter exactly 5 months after her marriage, that she had to sacrifice her life. She had to commit suicide, or at least so far that's what's been alleged in this very case. A 33-year-old girl. Another daughter that India has lost. It's a failure on the part of the society, one may say, in a way. And to an extent, this family has also fought the institution, and several of them at the same time, given that the in-laws are the boys, the husband here, Samarth Singh. He is from an influential family. His mother, Giribala Singh, is a former judge from Bhopal. So there's a lot that's gone into this very case. A family that's been fighting for justice since the very news that they received of their daughter's demise. And it's still not stopped. It's just one day where we see this family inconsolable at this given point after being handed over the body, as they have to now perform the final rites. It's unimaginable. There are no words to describe what this family must be going through right now, having to put their daughter, a sister, a friend to rest like this. Justice still remains to be given in this, to be delivered in this very case, and the family will continue with this legal battle. The investigation definitely has been taking twists and turns, but today we're speaking of a family that's grieving their loss. Ravish Pal joins me back on the broadcast. Ravish, aap hame jo ye visuals lekar aa rahe hain isi shamshan ghat se, ek aise parivar jo day one se apne beti ke mrityu ki khabar janne ke baad ladti aayi hai sirf nyay ke liye, aaj hum usi parivar ke members ko, sadasya ko dekh rahe hain kis tarike se bhavuk ho chuke hain. और एक तरीके से सोचा नहीं जा सकता है कि वो क्या क्या उनके ऊपर बीत रही होगी फिलहाल, जबकि एक एक बहन एक बेटी को आज इस तरीके से क्रिमेट किया जा रहा है।
1: तस्वीरें दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ पे जो है जो परिवार के लोग हैं वो आप बहुत भावुक क्षण है परिवार के लिए। जाहिर सी बात है लंबे समय तक उन्होंने लड़ाई लड़ी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन इतने जितने भी मजबूत हो सकते थे इसके बावजूद जो है परिवार अब यहाँ पे जैसे ही बेटी का शव बाहर आया मोर्चुरी से तो खुद को रोक नहीं पाए। और अब ये तस्वीर में देखिए, ये त्विशा की परिवार के तमाम महिलाएं हैं, त्विशा के भाई भी अब आ चुके हैं। मुखाग्नि जहाँ तक माना जा रहा है त्विशा के भाई हर्षित मुखाग्नि देंगे। इन सब के बीच में त्विशा की माँ जो हैं वो बेहद ज़्यादा भावुक हो रही हैं, रो रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि त्विशा के जो परिवार के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे भावुक क्षण है ज़रूर, लेकिन मानवता के रूप में भी अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा समय आ जाता है जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तय कर पाना कि अंतिम समय को किस तरीके से यहाँ पे परिवार के जो लोग हैं वो देख रहे हैं। ये त्विशा के परिवार की महिलाएँ हैं जो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हैं। कोशिश थी उनकी काफ़ी अपने आंसुओं को रोक पाने की, लेकिन जैसे ही बेटी का शव आया यहाँ से वो अपने आप को रोक नहीं पाए। और यहाँ पे फिलहाल आप देखें तो ये त्विशा की भाभी हैं, अब देखिए वो भी रो रही हैं क्योंकि बहुत खास हुआ करती थी ये त्विशा की। और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में दिखाएगी कि कितना प्यार था त्विशा और उनकी भाभी राशि के बीच में। लगातार वो इतने दिनों से इस लड़ाई को लड़ रही थी, लेकिन अब जो है वो यहाँ पे इतनी कोशिश के बावजूद भी अब जब त्विशा का शव अब यहाँ पहुँच ही गया है तो अब यहाँ पे ये रोक नहीं पा रहे हैं। त्विशा की माँ आप देख रहे हैं सामने, बहुत बुरी हालत है उनकी, बार बार वो बेहोश हो रही हैं उस दिन से जिस दिन से उन्हें खबर मिली। और अब जो है अब उनकी बेटी पंचतत्व में विलीन होने पहुँच गई है, पंचतत्व में विलीन होने की बेटी पहुँच गई है। तो ऐसे में अब त्विशा का जो पूरा का पूरा परिवार है वो अपने आंसुओं पर फिलहाल काबू नहीं रख पा रहा है। भावनाओं का ज्वर जो है वो इस वक्त भदभदा शमशान घाट पे साफ तौर पर देखा जा सकता है। हर वो आंखें जो इतने दिनों से इंसाफ की गुहार लगा रही थी आज वो सब नम है। त्विशा की माँ हो, त्विशा की भाभी हो, त्विशा की बहनें हों या त्विशा के परिवार के बाकी लोग हों, रिश्तेदार हों, वो सभी लोग जो हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भावुक हैं। और सब यही पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो अब ये देखिए त्विशा के भाई हैं, इन्होंने अंतिम संस्कार के लिए जो तैयारियां होती थी वो शुरू कर दी है। और ये आर्मी के मेजर हैं हर्षित जो आप तस्वीर में सामने देख रहे हैं। और त्विशा के अंतिम विदाई जो होने वाली है, जो अंतिम संस्कार होने वाला है, पंचतत्व में विलीन होने वाली है त्विशा कुछ ही मिनटों में अब, तो उससे पहले की जो धार्मिक क्रियाएँ हैं उसे पूरा किया जा रहा है। और दूर बैठ करके उनकी माँ, त्विशा की माँ जो हैं वो दूर बैठ करके अपनी बेटी को इस तरीके से पंचतत्व में विलीन होते हुए देख रही हैं। बेहद भावुक क्षण है ये परिवार के लिए। और बहुत कोशिश की उन्होंने कि बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। आखिरकार हाई कोर्ट ने सुनवाई की और हाई कोर्ट ने दूसरा पोस्टमार्टम के निर्देश दिए और उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, दिल्ली एम्स की टीम आई और जो खत्म हो गया है। तो परिवार बेहद भावुक क्षणों में, अंतिम क्षणों में आखिरकार अपनी बेटी को, अपनी बहन को अंतिम विदाई देता हुआ यहाँ पे। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तुषा की माँ जो हैं वो बेहद ज़्यादा भावुक हो चुकी हैं। यहाँ पे परिवार के सभी लोग जो हैं वो तुषा के अंतिम दर्शन बस अब करना चाहते हैं यहाँ से, क्योंकि पिछले 12 दिनों से तुषा जो है वो शव गृह में एक लाश बन के थी, उसको भी आखिरकार स्वतंत्र करना ही था परिवार को। और अब कहीं जा कर के पोस्टमार्टम जब हो गया है तो अब जा कर के वो आज़ाद हो पाएगी यहाँ से, ये कहा जा सकता है। तुषा के भाई हों, बहनें हों, उनके रिश्तेदार हो, सब यहाँ पे बेहद ज़्यादा भावुक हैं, क्योंकि एक तरफ तो उन्हें इस बात का दुख है कि शादी के महज 5 महीनों में ही उन्होंने जिस बेटी को, जिस बहन को इतने अरमानों के साथ विदा किया था, इतनी खुशी से विदा किया था दिल्ली से, अब तुषा की माँ पहुँच गई हैं अपनी बेटी के अंतिम दर्शन करने के लिए। और ये बेहद भावुक क्षण है उस एक माँ के लिए, क्योंकि सबसे मजबूत से मजबूत इंसान भी इस क्षण पर टूट जाता है जब उसे अपनी बेटी को या अपने बेटे को कंधा देना होता है। और वो अब आप देखें अगर तस्वीरों में तो ये एक माँ जो है वो पहुंच गई है अपनी बेटी के अंतिम दर्शन के लिए, ये सामने तस्वीरें हैं।
0: जी बिल्कुल रवीश, अब उनकी हम समझ सकते हैं उनके ऊपर अभी क्या बीत रही होगी। व्यूअर्स, यस, इट इज अ बैटल फॉर येट अनदर डॉटर ऑफ दिस कंट्री एंड दैट्स समथिंग वी हैव बीन फ्लैगिंग सिंस डे वन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेज, वॉट एवर द प्रोब ब्रिंग्स टू लाइट, वॉट एवर द लीगल टर्न्स दिस केस particularly takes, at the end of the day, it's a life lost. And it won't be the first. That is the unfortunate reality of this entire case. 5 months into a marriage is what we are speaking of. And we see Tusha Sharma having died by suicide. That's what's been alleged so far. So where is it that society is failing the daughters of this country time and again? That is the biggest question that comes to the forefront. Is institutional influence, or was institutional influence indeed used in this very case to manipulate the very probe since day one? Why is it that a family is having to fight tooth and nail for another post-mortem, and post that having to cremate their own daughter's body 12 days late? One can't imagine the condition the body must be in, which is why it couldn't even be brought back to her own maternal house in Noida. The rites had to be done, had to be conducted. The cremation is to be done in Bhopal itself. These are questions that really comes to one's minds, and it should be a wake-up call for the society and for the country as to where are we headed when we speak of women empowerment in this country. And it's not an isolated case. Just days after Tusha's case came in, there was another such case that was flagged from Noida itself, Deepika Nagar. This is what we're speaking of. Justice is something that this family has been fighting for since day one. And yet, be it from the Chief Minister's doorstep to the courts in Bhopal, they have knocked on every door possible. And finally, their pleas were heard. Yes, the High Court took up the very case, the Bhopal High Court. But why the delay? That still remains to be a big question, especially when we speak of the institution of justice in this country. Inconsolable parents at this given point, and it is inexplainable what they must be going through, even amid this fight that they have put up for 12 long days ever since the news of their daughter's demise reached them. This is one moment we can see the father, Navnidhi

0: justice be spread. And that demand indeed has grown, the chorus for that demand for justice has grown louder with each passing day. But one cannot forget, and one should not forget, the way this entire case, in fact, took its turn. And that same Navneet Sharma could be seen today in Bhopal, inconsolable, along with his wife, Twisha's mother, who too could be seen absolutely emotionally distraught at this given point, having to lay her daughter to rest this way. No parent imagines it. Ravish is back with us with more reports. Ravish, aap jaise ek tarike se bata rahe the ki itne dinon se हमने त्विशा के माता पिता को देखा है कैसे वो डटे रहे अपने जगह पर और लड़ते रहे त्विशा को इंसाफ दिलाने के लिए. आज के दिन काफी ज्यादा भावुक है, इनकंसोलेबल है और जाहिर सी बात है उनके लिए ये बहुत इमोशनल मोमेंट है. कोई भी माता पिता ये मोमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते कि ऐसा एक दिन देखना पड़ेगा उनको अपनी जिंदगी में. पर इसके बावजूद हम ये देखते रहेंगे कि इनकी जो लीगल बैटल है, जो फाइट फॉर जस्टिस है त्विशा के लिए, वो जरूर जारी रहेगी.
1: ने अपनी बहन को अंतिम मुखाग्नि दे दी है. देखिए, हम आपको सीधे दिखा रहे हैं त्विशा के जो भाई हैं हर्षित, उन्होंने अपनी बहन त्विशा को मुखाग्नि दे दी है. और अब इस तरीके से दुनिया से आखिरकार त्विशा पंच तत्व में विलीन होकर के रवाना होने वाली है. ये आप देख सकते हैं, ये एकदम अंतिम क्रियाएं जो हैं वो शुरू हो गई है. हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक एक भाई अपनी बहन को मुखाग्नि दे रहा है, उस बहन को जिस बहन को अभी 5 महीने पहले ही एक भाई ने बेहद हंसी खुशी रवाना किया था, विदा किया था अपने घर से एक बेहतर सपने के साथ. काफ़ी सपने देखे होंगे एक भाई ने अपनी बहन के लिए. लेकिन अब आप देखिए, शादी के 5 महीने बाद ही उस भाई को, अपनी बहन को शादी के जोड़े में इस तरीके से मुखाग्नि देकर रवाना किया जा रहा है, उसे विदा किया जा रहा है. और ये वो अंतिम क्षण है त्विशा के जीवन के, जो बतौर शव उसने 12 दिन मॉर्चरी में बिताए. और अब जो है यहाँ पर त्विशा के जो भाई हैं वो यहाँ पर मुखाग्नि दे चुके हैं और त्विशा का शव जो है अब वो यहाँ पर धीरे धीरे पंच तत्व में विलीन होता हुआ आपको दिख जाएगा. भाई ने अंतिम विदाई दी है अपनी बहन को शादी के लाल जोड़े में पूरी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ. और बेहद भावुक कर देने वाला क्षण ये उन तमाम लोगों के लिए जो पिछले इतने दिनों से लगातार त्विशा के इंसाफ के लिए न केवल मांग कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, बल्कि लगातार इस पूरे मामले को कवर भी कर रहे थे, उन सभी के लिए ये अंतिम क्षण और बेहद ज़्यादा भावुक कर देने वाला क्षण. उनकी माँ का रुदन चीख पुकार जो है वो यहाँ पे पूरे शमशान घाट में समय गूंज रही है. सामने तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं वो त्विशा की भाभी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, राशि. और इस तरफ अगर आप देखें तो त्विशा के परिवार के तमाम बाकी लोग आपको दिख जाएंगे तस्वीरों में, जो अपनी बेटी को विदा होते. सामने आपको त्विशा के पिताजी दिख जाएंगे जो बेहद निडरता से इतने दिन तक लगातार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर लड़ते रहे. और अब आप देखिए उनके पिता जो है वो अपनी बेटी को जाते हुए इस तरीके से देख रहे हैं. और ये कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी इनके परिवार में कि शादी के महज 5 महीनों के भीतर ही इनकी बेटी की ये दुर्दशा होगी कि उसे इस तरीके से दुनिया छोड़ करके जाना पड़ेगा. और त्विशा के अंतिम संस्कार की इन तस्वीरों के साथ आपको उस पिता को भी ज़रूर देखना चाहिए जो लगातार यहाँ पर इतने दिनों से अपनी नोएडा से आकर के अपने बेटे बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते रहे, लगातार यहाँ डटे रहे. और आप ये देखिए, ये उनके पिता हैं नवनिधि शर्मा जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है. और तो परिवार के दूसरे लोग भी हैं, चाचा लोकेश भी है यहाँ पे. सेना के तमाम लोग जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो यहाँ पे त्विशा के जो पिता हैं उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं कि वो जो कुछ भी अब हुआ है यहाँ पे उन्हें और हिम्मत, क्योंकि अब लड़ाई एक नई तरीके से शुरू होनी है. एक लड़ाई इन्होंने जीत ली है. त्विशा के शव का अंतिम संस्कार अब हो चुका है सेकंड पोस्टमार्टम के बाद. और अब त्विशा के पिता की आंखों में आंसू जो हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे. काफ़ी कोशिश की उन्होंने, हिम्मत दिखाई अपनी परिवार को संभाले रखने के लिए इतने दिनों तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए. लेकिन आखिरकार अब वो पिता भी जो है यहाँ पे टूट गया है,

0: और उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पे जो निराशा के भाव हैं वो यहाँ पे आपको साफ तौर पर दिख जाएंगे। 12 दिनों तक वो यहाँ मौजूद रहे, लगातार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट तक मामला ये पहुँचा है, हाई कोर्ट गए, CBI इंक्वायरी शुरू हुई, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, तमाम लोगों से मिले, भूतपूर्व सैनिक इस पूरे लड़ाई में उनके साथ जुटे, परिवार के लोग भी हिम्मत के साथ लगातार बने रहे। लेकिन अब वो अंतिम क्षण, वो घड़ी आ गई जो कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसके जीते जी उसे देखने को मिले, जब उसके सामने उसकी बेटी या उसके बेटे या उसकी संतान को इस तरीके से दुनिया से विदा होना पड़ता है। और ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके साथ ही अब हम आपको उनकी परिवार की जो महिलाएं हैं, जो माँ हैं, उनकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कैसे वो भी यहाँ पे देख रही हैं पंचतत्व में विलीन होती हुई अपनी बेटी को। सामने महिलाएं हैं, परिवार की ये माँ हैं जो रुक रुक करके बहुत ज़्यादा भावुक होकर के एक ऐसे विलाप में हैं जो जीते जी कोई माँ या पिता जो है नहीं देख सकता अपनी संतान को ऐसे जाते हुए। परिवार के लोग हों, परिवार से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, सेना के जो लोग हैं, वो तमाम लोग इस वक्त भावुक हैं जो लगातार इतने दिनों तक यहाँ इस लड़ाई में जुटे रहे। और अब त्रिशा की माँ को अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस बेटी को इन्होंने शादी के लाल जोड़े में 5 महीने पहले विदा किया था दिल्ली से, आखिरकार 5 महीने बाद शादी के ही लाल जोड़े में उसे पंचतत्व में विलीन करना पड़ेगा। और सामने आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो महिलाएं हैं बाकी हाथ जोड़ करके अब त्रिशा को अंतिम विदाई दे रही हैं अपनी बहन को। और परिवार के हर वो सदस्य जो पुरुष हों, महिलाएं हों, सभी इस वक्त बेहद ज़्यादा भावुक हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें इस घड़ी का साक्षी बनना पड़ रहा है जब उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने इस तरीके से पंचतत्व में विलीन हो रही है। 12 दिनों तक मॉर्चुरी में रहने के बाद वो देखिए अब इतने दिनों से जो आप देख सकते हैं, ये त्रिशा के कजिन भाई हैं आशीष शर्मा, जो नहीं रोक पाए आखिरकार अपने आप को। इतने दिनों से लगातार यही मीडिया को सारे अपडेट्स दे रहे थे इस मामले से जुड़े हुए, बहुत कोशिश की इन्होंने अपने आप को रोके रखने की, लेकिन आज आखिरकार वो सब्र टूट गया, वो सब्र आज टूट गया है। हम पिछले कई दिनों से 12 दिनों से लगातार आशीष शर्मा के ही संपर्क में रहते थे, हमें अगर कोई भी अपडेट लेना होता था इस पूरे मामले में या प्रक्रियाएं जो भी परिवार तय कर रहा है, आशीष से ही सारी जानकारियां मिलती थी मीडिया को। लेकिन इतने दिनों तक लगातार हिम्मत बांधे रखने के बाद आप जब उनकी बहन इस तरीके से विदा हो रही है, तो कोई भी भाई शायद ही अपने आप को रोक पाए और टूट पड़े हैं। अब आशीष भी और फूट फूट कर रो रहे हैं अपने भाई से मिल करके। ये चाचा लोकेश हैं जो लगातार मजबूती के साथ खड़े रहे नवनिधि शर्मा के साथ, अब वो जो त्रिशा के चाचा लोकेश हैं वो भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं इन सब के बीच में। ये बेहद भावुक क्षण इस वक्त भोपाल के भदभदा शमशान घाट पे, और शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा यहाँ पे जो इस वक्त उदास नहीं होगा, भावुक नहीं होगा, क्योंकि एक उम्मीद जो इतने दिनों से थी कि CBI इंक्वायरी होगी, सच सामने आएगा, सेकंड पोस्टमार्टम होगा, वो अब हो गया है। और उसके बाद ही शव जो है वो त्रिशा के परिजनों को सौंप दिया गया, और अब परिवार जो है वो यहाँ पे इन अंतिम क्षणों में अपनी बेटी को विदा कर रहा है। त्रिशा के तमाम लोग जो है परिवार से जुड़े हुए वो अपनी बेटी को जाते हुए यहाँ से अब देख रहे हैं इस तरीके से, और इन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी कि ये दिन उन्हें इस तरीके से देखना पड़ेगा कि जब उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी इस तरीके से इस दुनिया से विदा लेगी। और ये तस्वीरें जो हैं वाकई अपने आप में बहुत दर्दनाक हैं कि त्रिशा जो एक हंसता खिलता चेहरा थी, एक उज्ज्वल भविष्य जिस बिटिया का था, उसको इस तरीके से इस दुनिया से विदा लेना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें जो है वाकई बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली उन तमाम लोगों के लिए, भावुक क्षण पूरे परिवार के लिए। और अब यहाँ से एक नई लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि मामला अब हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। कल यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले का, उसकी सुनवाई होनी है दिल्ली में। इसके साथ ही जबलपुर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में सुनवाई होनी है तुषा की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द करने के मामले में, क्योंकि हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने तुषा की सास गिरिबाला सिंह को जो बेल मिली है उसे चुनौती दी है और उसी पर कल 25 मई को सुनवाई होगी। इसके साथ ही भोपाल की अदालत में इस बात पर सुनवाई होगी कि तुषा की मौत के बाद सास गिरिबाला सिंह ने जिन जिन लोगों को फोन किया उस पर भी जांच होनी चाहिए और उसे लेकर के भोपाल की अदालत में कल सुनवाई होगी। तो एक लड़ाई पूरी कर ली परिवार ने, सेकंड पोस्टमार्टम की जो मांग थी वो पूरी हुई, दिल्ली की टीम ने आकर के सेकंड पोस्टमार्टम कर दिया है। अब उस रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। परिवार के जो डाउट्स थे, जो उनको शक था कि कुछ चीजें ऐसी है जो पहले पोस्टमार्टम में नहीं आ पाई, अब 4 घंटे तक शव का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है
1: जी।
0: परिवार इस बात से संतुष्ट है कि नए सिरे से ये पूरा प्रक्रिया जो है अंजाम दी गई
1: जी।
0: टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है एम्स की
1: जी,
0: लेकिन
1: जी।
0: अब उस रिपोर्ट का इंतजार, और अब परिवार यहाँ पे मीडिया से गुहार लगाता हुआ कि अब उन्हें इन अंतिम क्षणों में अकेला छोड़ दें।
1: जी जी बिल्कुल,
0: अब वो
1: बिल्कुल हम ये समझ सकते हैं बिल्कुल। व्यूअर्स, वी आर रैपिंग अप द बुलेटिन दिस आवर राइट हियर। इट्स ऑन अ वेरी सॉम्बर नोट एंड यू कैन जस्ट सी द प्लाइट ऑफ द फैमिली टू विच हु हैज टू बेयर द ब्रंट एंड द ग्रीफ ऑफ हैविंग टू लूज अनदर डॉटर इन सच केसेस। And on that note, we're wrapping up this very bulletin.

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake up. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: So sorry.
2: अब ना त्योहार पर सोने के हार का टेंशन, न शादी में कंगन का मेंशन। अब ना त्योहार पर हार का टेंशन, न शादी में कंगन का मेंशन। पत्नियां ना जाने क्यों हो गई उदास, मोदी जी के मंत्र से पतियों ने ली चैन की सांस।
3: सुनो, इस अनाउंसमेंट ने जीता हमारा दिल। बीवियों का सोना खरीदना हो गया है मुश्किल, हो गया है मुश्किल।
2: थैंक यू मोदी जी।
4: सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए

0: Major Harshit Sharma, Trisha Sharma's brother, performed her last rites in Bhopal.
1: लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी और आखिरकार हाई कोर्ट ने मामले को
2: लड़ाई सर मैंने अकेले नहीं लड़ी है मैं इस आप सबने लड़ी ये लड़ाई ये लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ मीडिया ने लड़ी ये लड़ाई और इस आम जनता ने लड़ाई लड़ी है जो हमारे साथ खड़ी होकर के लड़ी है सबका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आगे भी हमसे जुड़े रहें क्योंकि न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत हृदय से धन्यवाद जिन्होंने सीबीआई को के लिए प्रेषित किया हमारा केस और हमारे दुख को समझा।

0: Major Harshit Sharma, Trisha Sharma's brother, performed her last rites in Bhopal.
1: लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी और आखिरकार हाई कोर्ट ने मामले को
2: लड़ाई सर मैंने अकेले नहीं लड़ी है मैं इस आप सबने लड़ी ये लड़ाई ये लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ मीडिया ने लड़ी ये लड़ाई और इस आम जनता ने लड़ाई लड़ी है जो हमारे साथ खड़ी होकर के लड़ी है सबका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आगे भी हमसे जुड़े रहें क्योंकि न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत हृदय से धन्यवाद जिन्होंने सीबीआई को के लिए प्रेषित किया हमारा केस और हमारे दुख को समझा
0: As the flames rose at the cremation ground, the battle shifted instantly from Bhopal to New Delhi. Trisha has been laid to rest, but the war for her justice has exploded. The Supreme Court of India has taken suo motu cognizance, intervening directly after a damning note to the Chief Justice exposed an alleged institutional cover-up driven by deep judicial influence of her in-laws. Trisha Sharma's husband Samarth Singh is locked in a 7-day police remand. His passport seized. With the CBI taking charge and the Supreme Court hearing the case, Trisha's body is

0: Major Harshit Sharma, Twisha Sharma's brother, performed her last rites in Bhopal.
1: लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी और आखिरकार हाई कोर्ट ने मामले को
2: ये लड़ाई सर मैंने अकेले नहीं लड़ी है मैं इस आप सबने लड़ी ये लड़ाई ये लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ मीडिया ने लड़ी है

0: Major Harshit Sharma, Trisha Sharma's brother, performed her last rites in Bhopal.
1: लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी और आखिरकार हाई कोर्ट ने मामले को
2: लड़ाई सर मैंने अकेले नहीं लड़ी है मैं इस आप सबने लड़ी ये लड़ाई ये लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ मीडिया ने लड़ी ये लड़ाई और इस आम जनता ने लड़ाई लड़ी है जो हमारे साथ खड़ी होकर के लड़ी है सबका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आगे भी हमसे जुड़े रहें क्योंकि न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत हृदय से धन्यवाद जिन्होंने सीबीआई को के लिए प्रेषित किया हमारा केस और हमारे दुख को समझा
0: As the flames rose at the cremation ground, the battle shifted instantly from Bhopal to New Delhi. Trisha has been laid to rest, but the war for her justice has exploded. The Supreme Court of India has taken suo motu cognizance, intervening directly after a damning note to the Chief Justice exposed an alleged institutional cover-up driven by deep judicial influence of her in-laws. Trisha Sharma's husband Samarth Singh is locked in a 7-day police remand. His passport seized. With the CBI taking charge and the Supreme Court hearing the case, Trisha's body is at peace, but the nation will not rest until the truth is laid bare. Trisha Sharma is finally at peace, but the storm she left behind has only just begun. With Ravish Pal Singh in Bhopal, Bureau Report, India Today.
3: On that very note, viewers, we are wrapping up this hour's bulletin right here, but do stay tuned to India Today.